सेवा, एक्सरे सेवा, लैब अर्थात प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 091-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: चेली हेदी दई बालाई लोटरी पड़ो बुण क्या बैंक को विवरण दिया पैसा खाता में आ जान बुण्यो धई धई बा तुमने लोटरी भर रही थी अब
2: आछी ना क्या हो रे चेली लोटरी पड़े तो निको हो
1: कभी नभरिया लोटरी कसरी पढ़ छ बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठै जनहित में जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाय।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: भूका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका एक नंबर वाड़ा कार्यालय को सार्वजनिक सुनवाई होने बारे को सूचना टीकापुर नगरपालिका एक नंबर वाड़ा कार्यालय को आर्थिक वर्ष 2082-83 में भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रम को बारे में सार्वजनिक सुनवाई होने भएकाले टोल विकास संस्था का प्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समिति का पदाधिकारीहरू राजनीतिक दल का प्रतिनिधिहरू बर्घर सामाजिक संघ संस्था का प्रतिनिधिहरू समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न सुझाव गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते समय बिहान 8 बजे स्थान एक नम्बर वाड़ा कार्यालय नगर विकास समितिको भवन सिटी हल नजिक टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनके भाल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से वर्षा शुरू हुई पाछे माटी गल के बिजुली के पोल धरकटी हुलाकी सड़क में धरल तीन थो पोल मरमत स्थानीय तह में सूचना और प्रविधि के काम है हालियो सहज बनैना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका उपक्रम सुद्धा पीना पानी केलक फिल्टर वितरण देशभर मनसून सक्रिय बागमती गंडकी लुम्बिनी और सुरपश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना हो कैलाली के हिकमत रावल गोरखा पत्रा के महाप्रबंधक में नियुक्त आप पूरा खबर बर्खा शुरू हुई पाछे माटी गलन के कारण से बिजली के पोल धरकटी रल कोर्से ठाव ठाव में समस्या आईती रह हावा चल के ढेर पानी पर्ना उपुरान माटी गलना रल कोर्से कमजोर पोल धरक के समस्या होती रहल विद्युत अनियमित फिना करते रहलबा काली टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 के हुलाकी सड़क में तीन थो पोल धरकलबा एक साथ बजार क्षेत्र में समेत पोल धरकर पाछे विद्युत प्राधिकरण टीकापुर शाखा से मरम्मत करलबा पोल धरकल पोल है तत्काल मरम्मत करके विद्युत सुचारी करगिल इंजीनियर विशाल उपाध्याय जानकारी दिले बाटे टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 से महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुक्रम शुद्ध पीना पानी केलक फिल्टर वितरण करलबा वाड़ा के 7000 बजट में 8 जाने स्वयंसेविका हुक्रम फिल्टर वितरण करगिल वाड़ा अध्यक्ष लालबीर चौधरी जानकारी दिले बाटे खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरे को संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्य को आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा सरकार से गोरखा पत्रा संस्थान के महाप्रबंधक में कैलाली के हिकमत रावल है नियुक्त करल बा बिफिक दिन के बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से रावल है महाप्रबंधक में नियुक्त करना निर्णय करल के हो सरकार के प्रवक्ता समेत रहल शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल से मंत्रिपरिषद के बैठक से निर्णय करलक जानकारी देने बाटे वहां के अनुसार सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय के प्रस्ताव में रावल है महाप्रबंधक में नियुक्त करके लिखो यह आगे सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय के महाप्रबंधक पद के लग आवेदन देहल उम्मीदवार मध्य 10 जहन के नामावली सार्वजनिक करल रहा वह सूची मन से छनौट हुके मंत्रिपरिषद से रावल है जिम्मेवारी देहल बताइल बा अर्थमंत्री डॉ सोनिम वागले से संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग हे समेत प्रधानमंत्री कार्यालय मार्फत में धरके विगत के राजनीतिक प्रतिशोध के समेत कुसंस्कार बैठक हे समेत कहती सरकार यह सुधार करना काम करती रहल बतवाइल बा प्रतिनिधि सभा के बिफेक दिन के बैठक में संपत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक 2083 ऊपर दफावार छलफल मौसल प्रश्न के जवाब देती ऐसी बतौरे खुए वहां विगत के विभाग के उजुरी थप के समेत राजनीतिक प्रतिशोध के आधार में मन नहीं पड़लक मनैन्हे दुख देना काम करते रहलक बतोई थी वहां भविष्य में आर्थिक अपराध के अनुसंधान केलक भविष्य में छुट्टी प्राधिकरण गठन करना विषय में समेत छलफल आगे बढ़ते रहल वहां के कहाबा आगामी दिन में वहां संपत्ति शुद्धिकरण विभाग में हाल प्रधानमंत्री कार्यालय मार्फत में नहीं हुके अर्थ मंत्रालय मार्फत में रहना समेत स्पष्ट पर्न बाटे अर्थमंत्री वागले से अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग समेत संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी मुद्दा दर्ता हो अभियोजन करना अधिकार समेत रलक उल्लेख करती हाल 13 निकाय से ऐसी मुद्दा चला सकना समेत कानूनी व्यवस्था रहलबा मुलुक हे ग्रे लिस्ट से समेत बाहर निकाले पड़ना अर्जेंसी समेत कारण सरकार से विधेयक लान के दावी करलक बता गिलबा। कंचनपुर के पत्रकार खेम भंडारी हे प्रहरी से पकड़ाव करलबा। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर के प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक तेग बहादुर रावल के अनुसार भंडारी विफेक दिन के बिहान के भीमदत्ता नगर पालिका 18 में पकड़ाव करलक हो। वहां के अनुसार गाली बेजेटी मुद्दा में अदालत से भंडारी एक महीना सात दिन कैद और 12,100 रूपया जरिवाना टोकल फैसला समेत कार्यान्वयन के क्रम में पकड़ाव कर गिले हो। भंडारी आवश्यक प्रक्रिया पूरा करके अदालत में पेश करना तैयारी फिटी रहलबा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पांच फिर सही भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, संपर्क नंबर 9849585808।
4: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाए तो
5: मई नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417। विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। महाशाखा के अनुसार आज देश के तमाम भूभाग में मेघगर्जन और चट्टान सहित मध्यम से लेकर भारी वर्षा पर्न रहलक ओर से उच्च हिमाली क्षेत्र में हिमपात की संभावना समेत रहलबा। जेकर अनुसार आज बिहान के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बाकल से बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में उस्तक कोशी उलुमिनी प्रदेश के कम स्थान में समेत वर्षा हुईना कहलबा। उस्तक दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बाकल से हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में वर्षा और हिमपात हुई सेकना बताया गया बा। तराई के कम स्थान में फिर मेघगर्जन सहित वर्षा के संभावना बा। आज रात के कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्र में एक दो स्थान में भारी पानी पर्ना चेतावनी दी सकल बा। कर्णाली सुदूरपश्चिम के हिमाली क्षेत्र तथा मेघगर्जन सहित के वर्षा और हिमपात की संभावना रहल महाशाखा के बुलेटिन में लिखल बा। उसके काल शनिचर के फे मौसम में खासे सुधार ऐना नहीं देख गिल हो। काल दोपहर के पहाड़ी और हिमाली क्षेत्र में मौसम बदलन बाकल से तराई के आंशिक स्थान में समेत प्रक्षेपण कर गिल बा। विशेष करके बागमती गंडकी लुम्बिनी सुरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। बर्खा शुरू हुई पाछे माटी गल्की बिजली के पोल ढलना समस्या गुलाकी सड़क किनार धर्कल तीन थो पोल बर्बर स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि के काम हे हालियो सहज बनी थी महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवी का उकरण शुद्ध पीना पानी में केलक फिल्टर वितरण देशभर मनसून सक्रिय बागमती गंडकी लुम्बिनी ओसुर पश्चिम प्रदेश की कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना ओकैलाली के हिकमत रावल गोरखा पत्रा के संस्थान के महाप्रबंधक में नियुक्त लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयक्रम सुनते विदा टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय को सार्वजनिक सुनवाई होने बारे को सूचना टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय को आर्थिक वर्ष 2082-83 में भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रम को बारे में सार्वजनिक सुनवाई होने भएकाले टोल विकास संस्था का प्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समिति का पदाधिकारीहरू राजनीतिक दल का प्रतिनिधिहरू बर्घर सामाजिक संघ संस्था का प्रतिनिधिहरू समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई को काम र सेवा प्रवाह का बारे में प्रश्न सुझाव गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिता का लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते समय बिहान 8 बजे स्थान एक नम्बर वाड़ा कार्यालय नगर विकास समिति को भवन सिटी हल नजिक टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।
6: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
7: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर BCA BBA बीई सिभिल का साथै MBA कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
6: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949।
8: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: कुछ नहीं कराए सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराए तो वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
1: बिखा हो कि नहीं हो कसी का चिन्ह ना कर दाई
2: लिया नेपाल में पाँच दिन बिखा सांपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गई जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा से कटला से निबाई थे सियाकर तर कटला पास दे भाग जो निचलना कह सास ठहर जो निशेकना में से लक्वा हुई से और डोम जो बड़ा रिसाहा में हिक रहा इनका फाट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह संजय बिहान देख पड़ता निकरा कटला से फिर लक्वा हुई से था वो और कैदी जाटक सांप निकरा कटला कल से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत से पाची होकर रकत बहना हुई से था उस समय का हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रहना बाधे सांप ये सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छा को अनाज बिग्रीना समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना धीर बिना का था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नासिबे सापन का जसाई का घटना धीर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सब पर दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमांडू मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागी प्रस्तुत संदेश
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झनै फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोलै फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: टाइ खबर आरौं
1: सतर्क आरौं ठगी बटे बचौं
0: सिद्धार्थ बैंक बटे जनहित में जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: प्लस टू उत्तीर्ण संपूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो
5: विगत 27 वर्ष देखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ
4: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर बिहडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091523312 र 523949

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्ता बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चुक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुनी
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल ले रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कब्बू लड़का कॉपी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी, ना कब्बू लड़का का पी रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस कटरास बाटिन। ये बुरह ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: विवेक जिना क्या सङ्घारू देव सांस ढ्युनी चल्क बैठ हाम्रा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैदी ऐ पारस ऊ घर दाडु हन मोटरसाइकल ले खाएको
5: हो
4: त
5: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताए झुल झल्याङ झुलुङ निकराखन मुहारी काँपीले ओही हन हौडी हेटु किल्लीमा काटला खल सुटीबा काटल ठाउँमा न छु चलाए निहुन
4: अब मै विवेक हन सजिल हुन कै ख वाकर कसकेला पिटी ता धीरे धीरे खोल ढेटु ओ घरी वो मुन्द्री फेक हार दे हम
5: मिठा रोशन मै यही ब्याला विवेक का जुत्ता वो मजा धीरे धीरे निकाल दे
4: झूठ जसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रह समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाँ फे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
6: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैफ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए जिठा।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना रासनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98246025। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628225।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कुटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर, नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जाय से गए।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।

0: চেলি হেদি ধ বালাই লোড চি পড়ে বুড়ে ব্যাংক বিবরণ দিয়া পয়সা খাতা মি আই যাঞ্চ বুড়ে
1: ধই ধই বা তুমি লোটি ভর রাই থাব
2: আছে না ক্যা হো রে চেলি লোটারি পড়া তো নিকো হো বা
1: কবই নবরিয়া লোটি কসরি পড়ন ছ বা ইসা মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ভাইবার কাইমিলে আয়ালে কবই জনপতিয়া ফোনে আয়া লাগাই আপনো বিবরণ কবই জন দিয়া কসাইলে বিত্তীয় সংস্থালে তোমার পাসওয়ার্ড পিন আদি কবইলে মাগদৈন ইয়ো তো ব্যাংক আফুইলে মাগদৈন সতর্ক রউ ঠগি বটে বচৌ সিদ্ধার্থ ব্যাংক পঠিয়াই জনহিতমি জারি সন্দেশ
3: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈব ভরিলাই
4: चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा
5: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
4: बहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागु औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
6: दिने सेवाहरू बेला बेलामा मुटु धुकधुक हुने, हात खुट्टा काप्ने या चिसो हुने, धेरै पसिना आउने, मनमा छटपटी हुने, ज्यादै झस्कने, तर्सने या डराउने भएमा,
4: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको
6: बढी बिसाउने, झिजो मान्ने, झर्कने, जिउ दुख्ने, दुब्लाउने, निन्द्रा नलाग्ने, भोक नलाग्ने भएमा,
4: काम काजमा मन नलाग्ने, त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा,
6: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा,
4: धेरै रक्सी खाने वा लागू पदार्थको सेवन गर्ने भएमा,
6: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा,
4: याद गर्नुहोस् है,
6: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकार मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ।
4: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस्। स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29700।

0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो घरको?
0: ठिक छु। हजुर,
1: मलाई सरी तिमी याद आउँछ साइली।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुंजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417
4: पंछी पालन व्यवसायहरू का लागि जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछी में लागने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो। विगत 3 महीनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा यो रोग देखा परिरहेको छ। पशु सेवा विभागबाट सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका छन्। तसर्थ पंछी पालक कृषक व्यवसायीहरूले रोगको संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं। फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री र सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रानी जमरा कुलरिया सिजन आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सीतापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कबू कापी रहे कबू पेन्सिल रहे कबू झोले फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा फिर उस पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गई यहाँ झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा
5: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
4: बहलपुर मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ मानसिक लागू औषध तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मोहन बेलबासे एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
6: दिने सेवाहरू बेला बेलामा मुटु ढुकढुक हुने हात खुट्टा काट्ने या चिसो हुने धेरै पसिना आउने मनमा छटपटी हुने ज्यादै झस्कने तर्सने या डराउने भएमा
4: असामान्य रूपमा धेरै लामो समयसम्म टाउको दुखी रहेमा
6: बढी रिसाउने झिजो मान्ने झर्कने जिउ दुख्ने दुब्लाउने निन्द्रा नलाग्ने भोक नलाग्ने भएमा
4: काम काजमा मन नलाग्ने त्यसै दिक्क मानेर बस्ने भएमा
6: असामान्य रूपमा एउटै कार्य बारम्बार दोहोर्याउने भएमा
4: धेरै रक्सी खाने वा लागू पदार्थको सेवन गर्ने भएमा
6: आत्महत्या गर्ने इच्छा उत्पन्न हुने तथा आत्महत्याको प्रयास गरेमा
4: याद गर्नुहोस् है
6: यदि यस्ता लक्षणहरू मध्ये कुनै एक लक्षण मात्र पनि धेरै लामो समयसम्म लगातार देखा परेमा यसले कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोग लागेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ
4: त्यसैले सम्बन्धित बिरामीहरूले नाम दर्ता गराई ढुक्क हुनुहोस् स्थान चण्डीमाई स्वास्थ्य क्लिनिक सम्पर्क मोबाइल नम्बर 091-560-856 र 98-580-29700

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं दे वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उ मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9800710672
8: स्वास्थ्यका लागि पानी
9: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी
10: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न लाउन कस्तो रहर लाछ
9: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
10: मेरो खुतुर्के छ नि आमा मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि
9: कुरा राम्रै हो छोरी तर कसकोमा जाने हो त
10: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ अस्ति नै हेरिसके मैले त
11: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू माइली तिलहरी हार झुम्का छड्के तिलहरी बाला चुरा चन्द्रमा जन्तर चन्द्रहार इन्डियन मंगलसूत्र औठी सिक्री बिना राशनका गरगनारो पाइन्छन् साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन् अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार फोन नम्बर 9868147979 9824625532 अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824628225

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक पाँच बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्त सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र और नेपाली पात्र में फिर सुनती रहलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। असार 19 गते समजानकी गांवपालिका के 76 टीकापुर नगरपालिका के 60% के लिए वित्तीय प्रगति। मनोसामाजिक सेवा वैदेशिक रोजगारी में अलग परिवार के सदस्य आयोजन में जोड़ती। बैतड़ी के गौरखान में बस दुर्घटना दुईजना की अवस्था गंभीर। और राष्ट्रीय सभा बैठक भेरोसिन मंत्रालय की विनियोजन शीर्षक के ऊपर छलफल जारी। कैलाली की जानकी गांवपालिका के चालू आर्थिक वर्ष की वित्तीय प्रगति 76.72% हुआ। असार 19 गते सम पूंजीगत खर्च करीब 52% हो। चालू खर्च 87% के हाराहारी में पुगल जानकी गांवपालिका के लेखाधिकारी दिनेश माझी जानकारी दिलबाट। चालू आर्थिक वर्ष के अभी असार 25 गते सम केही खर्च उठेना पैना व्यवस्था रहलवा। अभिनन्ती मोहर भारी योजना के भुगतानी देना बाकी रह कारण 25 गते सम जानकी गांवपालिका के गरीब 80% से ऊपर खर्च हुना आकलन करलक लेखाधिकृत माझी के कहा। जानकी गांवपालिका की वित्तीय प्रगति 76% पुगल। टीकापुर नगरपालिका की वित्तीय प्रगति 60.13% के पुगल। अमर चालुक तर्फ 72.66% हो। पूंजीगत तर्फ 38.64% खर्च हुआ। असार 19 गति सम के अवस्था हेलक अनुपात में 60% वित्तीय प्रगति हुई को यह अवस्था महिला टीकापुर नगरपालिका के चालू आर्थिक वर्ष की वित्तीय प्रगति 65% से हुईनाक के आकलन कलक टीकापुर नगरपालिका के लेखाधिकारी लक्ष्मी गौट बटिलो बाटी। अब फे कार्यालय में भुगतानी के लाग धेर फाइल ऐटी रहो सफ्टवेयर सुस्त हुईल काम में कुछ ढिलाई हुटी रहो। असार 25 गति रात के 12 बजेसम हुईल से फे सको काम के भुगतानी करना लेखाधिकृत ओट के कहा। टीकापुर नगरपालिका और जानकी गांवपालिका की वित्तीय प्रगति के तुलना कलक टीकापुर नगरपालिका जानकी गांवपालिका की वित्तीय प्रगति 16% बढ़ी हुई लगते गिलवा। नेपाल सरकार वित्तीय कार्यविधि अनुसार असार मसान्त के 7 दिन अर्थात 1 हप्ता घनै सरकारी खाता बंद करना पर्ना व्यवस्था बा। यही वर्ष असार महीना 32 के हुईलक असार 25 गते रात के 12 बजेसम सरकारी खाता में से खर्च करना अर्थात भुगतानी देना पैना हुलबाट। टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 के राजीपुर के कोकिला टमटा के श्रीमान विदेश मरलक। श्रीमान की विदेश में गई पाछ कोकिला 7 महीना सम संपर्क नई रलक। देश मरलक श्रीमान संपर्क में नई पाछ वहां के ढेर तनाव हुआ। तनाव ढेर हुई पाछ कोठा में कलह बैठना किनसे नहीं बोलना अनि मन में गलत विचार ऐना लगलक। अगर पाछ वहां टीकापुर नगरपालिका के मनोसामाजिक परामर्शकर्ता मीना को भेटल है। वहां के सलाह अनुसार काम करना लगल बाटी। वहां फिर मम बनेना तालीम लीलक। अब मम वन्य पैकिंग करना रोजगारी में जोड़ती रहलवाटी। मम बनेना काम से नियमित आमदानी हुटी रहलवा। वहां फे काम कर लागल पाछ दुबई मरलक। श्रीमान फे संपर्क मैलवाट कोकिला के आत्मविश्वास भरलक संग घर खर्च केलक आवश्यक कमाई हुई लागल बा। वो रात भर नैनी देना समस्या और तनाव से फे वहां मुक्त हुईलवाट। टीकापुर के वार्ड नम्बर 2 के कोठारपुर के जानकी चौधरी के जीवन में फे ढेर तनाव सहपर्ण। जानकी के छाई बीतलक 3 वर्ष हुई रह। छाई बीतलक 2 महीना पाछ विदेश मरलक। श्रीमान की समेत मृत्यु हुई रह। परिवार के दुईजना एकदम प्रिय व्यक्ति गुमाई पड़लक। जानकी हाँ अपना सम्हना नहीं सेकलक। घर के तनाव कक्षा नम भर्ती गलक। छावा के फिर पढ़ाई बिगड़लक। वकर पाछ जानकी के दिमाग में ढेर बात हुन नै सकल। मनोचिकित्सक भेट औषधि खाइल बस। टीकापुर नगरपालिका के मनोसामाजिक परामर्शकर्ता की नियमित परामर्श वहां सम्हलबाट। हाल जानकी के नास्ता पसल संचालन सम्बन्धी तालीम लेला व सहयोगी भेटना पसल संचालन करना सोच्नुबाट। स्नाहक अरू महिला सीता चौधरी के फिर श्रीमान वैदेशिक रोजगारी में गैल पाछ। समाज के व्यवहार आर्थिक तनाव ढेर हुईल कारण मानसिक समस्या में गुजरल रहे। लम्मा परामर्श हुईल पाछ। सिलाइपी सम्मा लगलग को नियमित परामर्श सेयर हेल पाछ। पारिवारिक शांति और जीवन सहज हुईलक बोटिलो बाट। सुरक्षित आप्रवासन के लग सीमा कार्यक्रममा कैलालीकी संयोजक विष्णु प्रसाद चौधरी टीकापुर मसे आर्थिक वर्ष 2081-82 954 जना वैदेशिक रोजगारी केलक श्रम स्वीकृति लेलक जानकी मसे 576 जना श्रम स्वीकृति लक तथ्याङ्कलक जानकारी दिलबाट रोजगारीमा जैना ढेर परिवारमा ढेरोसिन कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिलक सरकारमा फेर राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना 2077 कार्यान्वयनमा लल्ल काम कर्तिरहलो स्थानीय पालिका फेर मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकमा तमध्येकी मनोसामाजिक सेवा लेपना मोटेलबाट टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद नेपाने मानसिक स्वास्थ्य ठीक हुलेसेकेलिक शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुना हुलक यमा ध्यान दिन मोटिलबाट टीकापुर नगरपालिकाकी लेखा अधिकृत लक्ष्मी वार्ड मानसिक स्वास्थ्यका लागि नीतिगत रूपमा सुधार गर्दै आय आर्जनसँग जोड़ना सिप सिकेना उद्यमी बन्ना कार्यक्रम पालिका सकेना कलक बोटिलबाट टीकापुर नगरपालिकाकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता मीना कुंवर समुदाय विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श दिलक थियो बालबालिका उपचार तथा परामर्श मैलक बोटिलबाट विकास केन्द्रमा डगर लगानी भुटी रह तर मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी होइन नै सेक्लक मानसिक स्वास्थ्य बिरमहुकरक बहर्ती गैलक पालिकामा मानसिक स्वास्थ्य नीति समेत मन्त्री रहले महसिक कार्यान्वयनमा प्राथमिकता देहपना मनोसामाजिक परामर्शदाता थप नाम सेक्लक हुइलोको प्रयोग गर्न उहाँके कहाँ जोड़वा खोज खबरमा एकरी विश्राम विश्राम पाछा फेरि से विष्णुतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुइलक मार बेरम्हे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध गर्दती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल भिडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड्नी सेवा टुटल हाट जोड्नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जाँच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालिम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
0: बैटडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा धनगढ़ी मसे बैटडी जैती कलक सुप्र 01-001-3963 नम्बरके बस शुक्रबार दिनके 3:30 बजे बैटडी पाटन नगरपालिका 8 गौराखानमा दुर्घटना परलबा बसमा सवार 17 जनाकी उद्धार गरेके पाटन स्वास्थ्य चौकी खोटपे स्वास्थ्य चौकी हो डदिलधुरा अस्पतालमा लिलासेफे 2 जनाकी अवस्था गम्भीर रलक जानकारी प्रहरी कैयाली बैटडीके डीएसपी भुवन तिमिल सेना दिला बस सड़कमा 100 मिटर तर खसक डीएसपी तिमिल सेना बोटिलोबाट राष्ट्रिय सभाकी आजकै बैठकमा विनियोजन विधेयक 2083 के धेरैसिंह शीर्षक मध्ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोग के संघ गृह रक्षा परराष्ट्र अर्थ पूर्वाधार विकास ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई कृषि वन तथा पर्यावरण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी विनियोजन शीर्षकीय पर छलफल हुँदा विनियोजन विधेयकके उल्लेखित शीर्षकीय पर आफ्नो धारणा ढटी नेपाली कांग्रेसकी सांसद दुर्गा गुरूङ राष्ट्रिय गर्वकी सिंचाई योजना समयमा सम्पन्न नैकलक प्रत्येक वर्ष किसान समस्या प्रति अलग कति सरकारकै कृषि उत्पादन बढ़ेना प्राथमिकता ध्यापना बोटिलोबाट बैठकमा नेकपा एमालेके प्रेम प्रसाद डंगाल कृषि मन्त्रालयकी लाग अत्यन्त न्यून बजेट छुटेल कति कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सरकार व्यवस्था कलक बोटिलोबाट तस्तहकरके नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद उर्मिला अर्याल नेपाली चियाकी गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बाधा नै पर्ना करके सरकारकी गुणस्तर कायममा करपनामा जोड़ देलाबाट बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्मा लाखौं युवाहको नेपालमा रोजगारी देना करके कोनो कार्यक्रम नैलना कटी सरकार आधीन युवाहको वैदेशिक रोजगारीमा जैना बाध्य बन्दक आरोप लगेलोबाट आजकै बैठकमा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकीय उप सांसद थुक्र मीना सिंह रखाल ओ सोमनाथ पोटेल खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नबाट बैठकमा विनियोजन शीर्षकमा सांसद थुक्र धरना क्रम जारी रहल्बा। खोज खबरमा फेरि विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वन्तिर विश्राम सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो ना कबु कहो र घुम जाए त था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिजो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ।
12: याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
13: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
14: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585088।
0: सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन 31 वर्ष पाछा कार्यान्वयन प्रक्रिया कैलमा वर्तमान सरकार जारी कलक सय बुदे कार्यसूचीमा समावेशमूलक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न क्रम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण प्राथमिकतादेखि हिंस्याग 2052 सालमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त कलबाट ओ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावमा कार्यान्वयन प्रयोजन केला नापी विभागके उपमहानिर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाके संयुक्तमा 8 सदस्यीय समिति गठन गरिदा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुलक बमोजिमती कर्मनमा पलक 1859 रोपनी क्षेत्रफलकी जग्गा जो लक्ष कुकिताके कारोबार किनबेच नामसारी वा अन्य सकु माध्यमसे हुन हक हस्तान्तरण रोक्का कलक भूमि व्यवस्था सम्बन्ध मन्त्रालय स्पष्ट कलबा भूमि व्यवस्था सरकारी संघीय मामिला तथा सामनाय प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल हे असार 10 गतेसम्म सम्पादित प्रमुख कार्यमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्राथमिकतासँग उल्लेख गर्ला रहे। यही समाचार संघ खोज खबर वरेल दिनासी पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेर से एक चोर 19 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र टिकापुर नगरपालिका के 60% के लिए वित्तीय प्रगति मनोसामाजिक सेवा वैदेशिक रोजगारी मरलाक परिवार के सदस्य आयोजनमा जोड़ती बैतडी के गैरा खानमा बस दुर्घटना दुईजना के अवस्था गंभीर राष्ट्रीय सभा बैठक ढेडोसी मन्त्रालय की विनियोजन शीर्षक के ऊपर छलफल जारी लिटा बकला खोज खबर तह प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी यहां धन्यवाद लिटिया बकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रसन्न सुनती रवि राम राम।

0: का हुई कमल आयने बुक खाइल बाट उठा
1: एरी न काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही सबो का दे ली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटू
0: सबको कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केंद्र ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तारीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सबको कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदंग से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहू
0: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा डाली नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्ष चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकले बात
0: एम्बुलेंस आप समय लागे के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र सम्पर्क नम्बर ठहरलरह पठा सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लम्भक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइ लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा ह्यार सेक्दिथा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेजका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौ उच्च जीवन स्तर निर्माणका लागि निर्णायक क्षण यही हो
5: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिलका साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्न हुन अनुरोध छ प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे साथै अनलाइन फारम nast.edu.np मा उपलब्ध छ
4: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-312 र 523-949
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू
2: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
1: हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देटी रहल सक्कु बेरम हेम जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423।

0: कापी रहिथ कबु पेन्सिल रहिथ कबु झलै फटाका आजिथ काकना हो बाबा फि होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झला लाना नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओटो का हो टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कापी हेरी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुईन कहिए आनल झोला जसका टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
4: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 67 72